उस वक्त मना रहे हैं सब कहेंगे जी सर्वी सचे पातशाह गरीब नवाज अंतर जामी श्री गुरु रामदास साहब जी का जो अवतार होया सब संतों को बधाई होवे सवा पहर के अमृत वेले कसोल तुम्हारा प्रगट होए उस वे बाद भाई संतोष सिंह साहब ने लिखा है कि महाराज के प्रगट होने की इन्नी खुशी हुई वरुण देवता ने पलट करके अपने जल के रूप में दुधिया नदियां उस वक्त बागिया सवा पैर के करके दुधिया सारिया नदियां जो दुधी बागिया उस वक्त ऐसा ऐसी खुशी वरुण देवता ने मनाना किसी गुरु रामदास साहब के प्रगट होने को देवतियां मिल करके चंदन कसा के कल्प दृश्य फूलों दियां महाराज गुंद गुंद के चूना मंडी जो लाहौर में गुरु महाराज हो जन्म स्थान है जो श्री हरिमंदर साहब की शक्ल के नाल स्थान बनिया होया सुंदर बड़ा सुंदर जड़ती है उस मंदिर के उत्ते महाराज साहब के अवतार धारण की खुशी का संत संगत जी चरण कसा के फुल कसा के फुल दिया माला गुण गुण के उस मंदिर के अर्पिया सुख खुशी के शंख बजाओ उसे देवते सारे देवते मेरे को गुरु महाराज साहब के अवतार धारण की खुशी बूहे के अगे आके महाराज का जस गाया कीर्तन गाया क्यों राग रचाया आनंद जगत्र राग राग ने मंगल गाया सारे संसार में इस प्रकार आनंद प्रगट होया रागा रागनियों च मिल मिल के देवतिया ने गुरु साहब का जस उच्चारण किया क्यों सवा पैर जो करके अज अमृत वेले महाराज साहब आपकी वे पिता का शुभ नाम जेड़े कई जन्मों को ला के तपस्या करते सन बाबा हरदास जी नाम सी उन्हें तपस्या में इच्छा सी कि महाराज मेरे घर में आप अंतर्यामी बालक रूप में प्रगट हो माया दया कौर जी जो सतगुरों की माता सी ये भी नाल तपस्या कर रहे उन्हें बहुत सारे जन्म गुजर गए सन इस जन्म में अंतर्यामी ने उन्हें इच्छा पूरी करके सतगुरु रामदास रूप अंदर प्रगट हो सके पातशाह इस प्रकार साहब संगत जी अज गुरु है जिस दिन गुरु रामदास साहब जी ने अवतार धारण किया है अज श्री अमृतसर साहब इस गुरपुरब के नाई बड़ा चढ़दियों कला के नाल मनाया जा रहा है बेअंत संत कीर्तन दियां चौकियां बड़े बड़े रागी मिल करके बेअंत संतों के इकट्ठे होके सतगुरु सच्चे पातशाह के श्री दरबार साहब के अंदर गुरु के बाग के दीवार सजे हुए हैं तरह तरह के अपने जस के फुल गुरु महाराज साहब के पास शब्दों के राही कीर्तन के राही अनेक तरह भेटा कर रहे हैं सतगुरु उन्होंने प्यारियों अपना सुखी सुख प्यार बख्शन अज आप संगत इतने महाराज के सतसंग

तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलों विच सुभाईमान सतसंगी प्यारियो करो कृपा असी संबख्शो अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछलेरे दिनों विच आपां विचार दी सांझ पाई सी जस पत राय दा कतल होया उस पापी नूं नरक सधारिया लख पत राय बुखला उठा कानू वाण दे शंभ विच लुके सिखां दे लई उन्हें फौजां लेके घेरा पा लिया। एक पासे फौजा ने एक पासे पहाड़ी है उदे उत्ते प्रबंध कीता होया है। तीसरे पासे रावी है चौथे पासे इस पापी ने आप अग ला दिती जंगल नू। गुरु के सिख जिमें किमें हो सके विचों कुछ एक निकल भी गए पर बहुते सिखां दा इत्थे शहादतां दे जाम पीते गए। करीब इतिहास इह गल आखदा है इको दिन विच 10,000 ते नेड़े सिख जिहड़ा ओह शहीद होया कुछ 7,000 दे नेड़े उत्थे ही शहादतां दे जाम पीते ते 3,000 पकड़ के लैके गया नखास चौंक लाहौर दे विच इत्थे शहादतां होईयां। इस दे मगरों लखपत राय पकड़िया जांदा है क्योंकि दोनों भरावां दा जंग हुंदा है यहीया खान दा ते शाह नवाज दा दोवें जकरिया खान दे पुत्तर ने। उहदे दरमियान ये लखपत

गुरु सवारियों जी, असी सन बख्शो प्यार आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले समय तो सिख इतिहास दे विचारां दास तुहाडे नाल सांझियां करदा रहा सी। अज आप कोशिश करनी है गुरु साहब कृपा कर 1800 तक आप विचार कर सकी। मिसलां की गल दस तुहाडे नाल सांझी कर रहा सी। मिसलां दे जिन्ने भी मुखिए सन वह बुजुर्ग हो गए। पहली गल यह हुई भी वह बुजुर्ग होने के नाते थोड़े कमजोर हो गए, वह गल ना रह सकी। दूजी गल, जेड़े लोग किसी वेले अमदाली की शानी भरते सन या मुगला की शानी भरते सन या वक्त के हाकमां की खुशामद करते सन, उहियो लोग इस मिसलां दे सरदारां कोल आ गए। हुण खुशामद करना उन्हां दे खून विच सी, उन्हां ने इन्हां सरदारां दी भी खुशामद करनी शुरू कर दित्ती। ऐसा भाणा वरतिया इह सरदार जिहड़े कल किसे कोलों नहीं सन हारदे उह जबान दे मिठियां कोलों हारन लग पए। जिहड़े तलवारां नाल तीरां नाल कदे ना हारे उह जबान दे मिठियां कोलों हारन लग पए। खुशामद है इहो जिही जिहड़ी मनुख दे अंदरले हंकार नूं जगा के हंकार दा रोगी होमे दा रोगी बना दिंदी है। अनेकां तरह के इहो जे लोगां ने। दूजी गल, भरा मारू जंग उवें तुहाडे नाल पिछले दिनां च सांझी कर बैठा होया, एक दूजे तो एक दूजे दीआं मिसलां दे उत्ते चढ़ के जाणा इह उहनां ने किरदार बना लिया। इसे दे दरमियान जदों इस तरह के हालात बन गए ते इना विच्चों जिहड़े बाकी कुछ एक चंगे सरदार सन उना विच्चों कुछ चढ़ाई भी कर गए, अगलिया मिसलां दे जिहड़े होर सन जथेदार होर बन गए। उहदे नाल की होया भी जिहड़ी गल अगे सी ना उह ना रही। इत्थों तक मैं बेनती करा, मेरी जबान साथ नहीं दिंदी मैं किवें कहां, पर लेकिन अपना इतिहास है। दो पक्ष आपां नूं लुकाउणे नहीं चाहीदे। यह माड़ा पक्ष है, ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਭੰਗ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अहमद शाह अब्दाली की गल आप कई बार विचार चुके। 23 अक्तूबर 1772 उमर गया। तैमूर शाह 1793 तक जीवदा रहा, पर उन्हें बहुतिया लड़ाइया सिखा नाल नहीं लड़िया। वो एक ही गल कहिंदा सी, मेरे बापू ने लड़के की खट लिया। पर उहदा जिहड़ा पोतरा सी शाहजमान, यह तैमूर शाह का छोटा पुत है। इहने मन विच भावना बनाई, इहदी वृत्ति अपने पिता वर्गी तैमूर शाह वर्गी नहीं है, इहदी वृत्ति अपने दादे वर्गी अहमद शाह अब्दाली वर्गी है। इहने कुछ इक हमले कीते, जदों इह तख्त ते बैठिया इहने हमले कीते। 1795 विच हमला कीता, 1796 विच हमला कीता, 1798 विच हमला कीता, 1799 विच 14 जनवरी नूं वापस चला गया। ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਮਨ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1793 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ 1799 ਚ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹ ਘਟਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ

0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों बिपर बताई।
1: तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी भी सजी होई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां। प्रसंग श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया, सहिदा बेग शरनी पिया, श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने। दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया, अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का, जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नूं 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़ियां दिन बाकी सी जदों चले ने, सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं ही लियाउणा, होर किसे नूं तंग नहीं करना। महाराज का वचन मन के पठान नूं बन लिआंदा रस्सियां नाल, अते उस ब्राह्मण की स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती, की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु
0: साहिब जी। चौपाई तुरक सुबत जैसा जिस भाए, जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसी डर तो बिना किसी खौफ तो, यह साडा राज है, मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता, मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है, अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो, गयो पठान संबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकता है कवि जी कहंदे ने किसे ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया, हो सकता वो इलाके दे च बदनाम होवे। जाबर खां पहलां भी लोकां दीआं धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे, ताइयों किसे ने उहदी मदद भी नहीं कीती है, कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनूं पकड़ लिया।
0: जिनी को एक तुरंग चढ़ायो, एक रीत फल सबन सुनायो।
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा, पठान नूं भी खड़ा कर लिया, पिंड वालिआं नूं इकट्ठा करके। सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया, बई असीं इहनूं ऐवें नहीं लै के जा रहे, इहने आ कुकर्म कीता है, इस करके असीं इहनूं पकड़ के लै

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निज तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गए है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर चढ़न लगे,
1: उछलियो घोड़ा बल को भरियो, ने आसन पर श्री प्रभ थिरियो।
0: घोड़ा उछल गया उस वक्त, छाल मार गया। उस वक्त सतगुरु महाराज फिर घोड़े उत्ते असवार नहीं।

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुनजननी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छाला भी मरवाइया, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया कि हम गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने माता

0: सच्चे पातशाह महाराज ये तुहाडा ही पंथ है। हुण पंथ की कटिया हो रही है, भाव कट वड हो रही है, पंथ हुण हार रहा है। पहला नहीं सी दिखिया महाराज कहते जद असी बचन किया उदों तुहानू याद नहीं आए असी। ये छत्र छाया ही ठीक रहिंदी गुरु साहब की, जे छत्र छाया छड़ दिए फिर लोग चारे पासों पै जांदे हन।
1: क्यों ना संभारत हट पिछवाई कौन खता इनके घर पाए।
0: महाराज केड़ी गलती हो गई सातों, क्यों नहीं तुसी पिछे हटदे, क्यों नहीं साडी मदद करदे।
1: जेकर सिंह है अवगनियारे तौ आप के जगत उचारे।
0: जे सिंह अवगनियारे ने ता भी जग ने तो होर कुछ नहीं कहना, जग तो फिर भी यही कहेगा कि कलगियां वाले दे सा

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदाने जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्था दे शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। यहां गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना कदा खिचण फिर आपां सीधे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु के वचनां दे उत्ते पहरा दिता है एक एक वचन नूं कमाया है उन्हां नूं सतगुरु महाराज निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जाती तां माफी मंग लो। यही दस्या है माफिया मंग लिया करो सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेर करो सातों को गलती हो जाती है सौ गल्लां हो जांदियां ने सातों पूरी रहत नहीं कमाई जाती। हां थोड़े सिख ही आ पर नहीं कई बार साढ़े को ढिलाइया हो जांदियां ने। और सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो माफिया मंग लईए कि महाराज असं इन्ने योग नहीं हां सानू बख्श लो। इस तरह महाराज अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए।

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वरगे बचन सन वरसम, यह वर हो गया खालसे नूं, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, इहदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण वचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अर दमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनुख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गर्जन दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: इको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं, दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। लोक ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हती को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग पर हारे,
0: ये सारियां इको ही किस्मां बरछे दियां ने, तोमर ते सेला ते सांग, सोटी का फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिपर अगर कर किस खग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने ओह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतर आईयां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: बहुत दीर्घ मार मची, बड़ी तगड़ी मार मचाई शहीदां सिंघां ने आके।
1: مر مر پرتے پائے پسارے
0: مر مر کے لمے پی گئے پائے اپنے پیر پسار کے اسی وقت ہی انہوں کا تو بار نہیں چل سکتے وہ جی ایک برچا مارن سو سو بندہ کٹھا ہی ڈگتا ہے
1: جنم لنگ بھگے کو کھائے
0: مانو کے جی

0: पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यों कहने समाधि ला ली गुर चरणा में समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पर सुने कलयुगता का दास।
0: जिहड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा ये साखी नूं सुने कलयुग दा दास बन जाएगा।
1: पाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओहदे भज जाणगे भगती ओहदे हिरदे जागेगी तन गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी जिहड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने बचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नूं सोहणा सुनाया इतिहास। आउण वाला समा मुकदी गल मुकाईए बई अमर छको दाड़ियां जिहड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जांदे ने आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इको ही बचन कीता कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो अमर छको गुरु वाले बनो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी इह सारियां चीज़ां तां विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा है कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग के जीवां नूं शंके बहुते हुंदे ने। शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा नहीं तां सारे नालों सौखा काम महाराज इक कह देण भी उह वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जे ते बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी उह वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग जाणगे भई किहने कहा महाराज जी ने कहा। यह साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए ये कहण दा की फायदा फिर की बनेगा गात्रा पा के की बनेगा। अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों इसे करके विस्थार करना पैंदा। तो महाराज कहने जे वैसे ही एक गल मान लो सारियां गल्लां छड़ दियो पर नहीं मनदे फिर भी कहिंदे आह गल क्यों आ किवें इहदा की लाभ है। पर सतगुरु कहिंदे जे सारे जने इको ही बचन मान लो उसे विच ही भला है। महाराज वो किहड़ा बचन

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै ले, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेड़े मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेड़े हुण आपां नूं मानदे ही नहीं गे, गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वो सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जेड़ा गुरु घर दा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करते, कई ब्राह्मण गुरु घर के प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, वह तो एक गुरसिख है, भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जाए, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहिए। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: सुपते निसमै सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतान उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था के चमेली के फुल गुलाब के फुल लेके मत्था टेकया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जाती है सारे व्यापक एको ही रूप दिखता है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना कि नदी के पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हाथ आ जांदे तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हाथ आना तां है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी। आमदन वाला हाथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडतों नाल कर रहे हैं। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी, इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते हैं किन्नी क है, किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जा नहीं रखते। कविया के ज्ञान परखना, उन्होंने जवाब देने ने, उन्होंने जिहड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं, असल विच ये गल इस तरह नहीं है, ये गल इस तरह है। कविया के जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करे प्यार सत्कार। आओ श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार, दर्शनों करिए पवित्र गज के आ

0: कलयुग पुत्र कलयुग दे विच ओ बंदे नूं तू चंगा मन्नी जेड़ा बंदा अपनी इस्त्री विच जती होवेगा ओ तो डरी क्योंकि वह बंदा बड़ा चंगा है जेड़ा सच दी विचार करेगा की खाना ते की नहीं खाना ओ बंदा भी चंगा ओदे कोल ना ज्यादा जाई तंग ना करी ओनू अपनी नारी विच सती बरता होवे ते अखाज दे खाण विच बिरती विच बरागवान होवे ते चित विच सच करके धार लै गल ऐसे पुरुषां नू कदे तंग ना करी
1: सतजुग मेरे सिर बसो पुजा बसो तित्रे
0: कहने सतजुग तां मेरे सिर ते बसदा है कहण लग्या ब्रह्मा बावां विच मेरे त्रेता वसदा है
1: द्वापर बसियो जंग मम तू चरणन को से
0: जेड़ा द्वापर है युग ब्रह्मा कहंदा ए मेरियां जंगां विच वसदा है अते जेड़ा कलयुग है ए मेरे पैरां विच वसदा है
1: अंग अंग की मुक्त ए वेद मांझ लिख देन
0: कहंदे इस तरीके दे नाल जेड़ा ना वेद विच ए गल लिख दिती है कि धर्म दे केड़े अंग नाल ब्रह्मा दे केड़े अंग भाव युग विच मुक्ति होनी है कलयुग विच किवें मुक्ति होनी है सतयुग विच किवें होनी है त्रेते विच किवें द्वापर विच किवें सारिया युगां दा आपो अपना धर्म है सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार तीनों युग तीनों देणे कल केवल नाम आधार कलयुग दे विच केवल नाम दा ही आसरा चलेगा बाकी सारे आसरे खत्म हो जाणगे
1: सोई सो साची भले सकल समाला कीन
0: सो इस प्रकार दे नाल कहिंदे ओह पिछे कही गल सच्ची है ओह गल भली है सारी दा संभाला तुहानूं करा दित्ता है पा अथवा तुसां समूला कर लिया याद कर लिया है मैं तुहानूं दस दित्ता कि मेरे समय विच की वर्तारा वरतेगा
1: अपनो अपनो राज कर तुम आयो मम धाम
0: ब्रह्मा ने सानू कहा कि आप अपना राज करके तुसी वापस मेरे घर जा जाना
1: कर कर करनी कल्प लग पाइयो आए आराम
0: तो कर करके अपनी करनी कल्पां तक एक कल्प जेड़ा हुंदा है एक कलम जैसा हुंदा कि दस युग जदों लंघ जांदे ने इस तरीके नाल अपनी करमी करके करमी आपो अपनी करके फिर मेरे कोलों सेनता विच ब्रह्मा दे वाक कहने ये वाक ब्रह्म संहिता विच कहे हुए इन्हां ने लए ने कि जप जिहड़ा चार प्रकार दा इस ढंग दे नाल चार वेद ये सारियां चीजां जिहड़ियां ने ये सुनाईयां कलयुग ने आके महाराज नूं
1: ब्रह्मा वाक कै संगता परा पसंती जाप
0: तो ब्रह्मा ने संगता विच कहने अगे जाके दसदे ने कि जाप लिखे ने परा बाणी पसंती बाणी ए सारियां बाणियां दे जाप
1: मदमा वैखरी जाप रस चार वेद इस थाप
0: फिर जिहड़ी बाणी लिखी है मदमा बाणी है फिर इसे प्रकार बैखरी बाणी बैखरी मुंह नाल बोल के जिहड़ा जाप हुंदा मदमा कंठ विच हुंदा पसंती फिर हिरदे च परा बाणी नाभी च ते इसे प्रकार अगे रोम रोम दा जाप है तो इन्हां विचों किसे द्वारा नाम दे जाप दा रस लवे बंदा
1: नारायण देव है पराका नरपसियंती इष्ट
0: तो नारायण देव जेड़ा है ए परा बाणी दा है मालक ते जेड़ा नर है ए पसियंती दा इष्ट भाव जेड़ा देवता श्रेष्ठ इष्ट नूं कहंदे ने तो इस तरीके नाल कहंदे ने कि जेड़ा देवता है ना पसियंती बाणी दा ए नर आप है नर ते नारायण दोवें विष्णु दे अवतार मन्ने हन
1: स्वास ठहरावै नाभ कर उठे तरंगी तोज
0: इस तरीके नाल कहिंदे जे नाभ दे विच स्वास ठहरावेगा तो इस तरीके नाल फिर कि उहदे विचों आनंद दी लहर उठदी है इस तरह दे इन्हां दे जाप आदिक दस रहे ने
1: नाम भजन की जुगते मथुरा बख्शी मोज
0: तो नाम भगत दी जुगती ए दसी है कि इस तरीके दे नाल भाई जाप करना यह कुदरती ही हो जाता अपने आप जे मूह नाल वाहेगुरू वाहेगुरू करो तां यह बैखरी बाणी हुंदिया हुंदिया कंठ विच जाप अपने चलिया जांदा अपने
1: नाम भजन की जुगते मथुरा बख्शी मोज
0: तो नाम भगत दी जुगती यह दसी है कि इस तरीके दे नाल भाई जाप करना यह कुदरती ही हो जाता अपने आप जे मूह नाल वाहेगुरू वाहेगुरू करो ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਆਪਣੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ।
1: ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰਤ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਮ,
0: ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਖੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਐਵੇਂ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਲਯੁਗ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰੇਗਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਡਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਬੜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੜੁੱਕੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ

0: चलन समय संग रहण में दान दीन ओलीन।
1: चलन वेले किते भी जाना होवे, संग्रहण तो भाव एकत्र करना होवे, शुभ गुण इकट्ठे करने होण, दान देना होवे,